0: ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
2: जल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया. गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग. टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया. इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है. ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है. विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है. प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है.
5: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है. 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है. जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है.
4: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है.
5: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं. गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है. और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है.
4: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया. संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे. सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे. गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी

0: मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की चार दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मॉनसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the four-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
6: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है
5: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service between from Jind Railway Station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat Railway Stations and cover the 89-kilometre distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border, to inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Home Minister will also chair a meeting in Siliguri to review border management and security-related issues in the state. More from our correspondent.
7: Union Home Minister Amit Shah arrived at Baghdogra last night on a three-day visit to West Bengal. Today he will visit two border security force camps in North Bengal and address a Prohari Shambelan. He is also scheduled to hold a series of meetings at Uttarakhand on issues concerning the border areas of North Bengal. Chief Minister Shubhendu Adhikari and senior state government officials are likely to attend the meetings. Mr. Shah will travel to Kolkata this evening. Tomorrow, the Union Home Minister will review the law and order situation in the state at a meeting with senior Polish officials. He is also scheduled to attend a function at National Library and participate in the foundation stone laying ceremony of the Amul Dairy Plant at Dhulagar from the Bishwa Bangla Convention Center. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis will jointly lay the foundation stone for three major national highway projects worth over 16,700 crore rupees in Pune today. The projects are expected to enhance connectivity, reduce travel time and traffic congestion, and boost industrial and economic growth in the Pune region. The projects will be implemented under the design, finance, build, operate and transfer model, with a 29-year concession period, and are scheduled for completion within 4 years. Skyroot Aerospace is set to undertake the maiden

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: कंग्रेचुलेशन इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो

0: बताई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
2: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
2: ये समाचार हमारे newsonair.in और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
2: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
2: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र से पहले सरकार ने

0: कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ಭಾರತಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಂ ನಿಜ ವಿಕಸಿತಂ ಕಕ್ಷೀಯಾಂತರಿಕ್ಷಯಾನಂ ವಿಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮಂ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಣೋದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ ಸಂಪೂರ್ಯ ಕಕ್ಷಾಯಾಂ ಉಪಗ್ರಹಾನ್ ಸಫಲ ರೂಪೇಣ ಪ್ರವೇಶ್ಯ ಸ್ವಕಕ್ಷಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್. ಅಸ್ಯ ಯಾನಸ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಂ ಅದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ 5:25 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾಯಾಃ ಸತೀಶ ಧವನ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರಾತ್ ಸಮಜಾಯತ.
1: 2-1-0.
2: And we have lift off of Vikram 1, India's first private orbital launch
3: lift
2: vehicle.
3: Lift off normal.
2: Vikram 1 ne apni udan bhari pratham charan ka prajwalan.
0: अस्माकं वार्ताहरेण विज्ञापितं यत् अनेन ऐतिहासिक पदक्षेपेण भारतं निजकक्षा प्रक्षेपण क्षमतां प्राप्तवत्सु विश्वस्य देशेषु तृतीयान्यतमो सञ्जातः. मिशन आगमन इत्याख्येन अभियानेन विकसितं एतदन्तरिक्षयानं लघु उपग्रहाणां कृते अल्पव्ययुक्तं प्रक्षेपणसेवायै वर्तते. भारतीयान्तरिक्ष उपक्रमस्य जनकः डॉक्टर विक्रम साराभाई इत्याख्यस्य नाम्ना व्यपदिष्टस्य अस्य विक्रम वन यानस्य रचनायां त्रिस्तरीय दृढ प्रणोदक चरणानि सहैव अमोघ कक्षा प्रवेशाय रमण इत्याख्यः देवेन्द्रन गन्त्रं प्रयुक्तमस्ति. इदं यानम् उपग्रहान् पृथिव्याः निम्न कक्षायां स्थापयितुं पूर्णतया सामर्थ्यं भजते. अंतरिक्ष कक्षायाम् अस्य सफल प्रवेशात् परं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष माध्यमेन स्कायरूट एरोस्पेस दलस्य वैज्ञानिकानां च अभिनन्दनं व्याहृतवान्. श्री मोदी न्यगादीत् यत् विक्रम 1 यानस्य अयं सफलोत्कर्षः अंतरिक्ष क्षेत्रे देशस्य आत्मनिर्भरता यात्रायां कश्चन प्रमुखः कीर्तिस्तम्भो वर्तते. प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् इयम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः देशस्य यूनः नवीनोन्मेषाय अग्रे आगन्तुं प्रेरयिष्यति. रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् भारतस्य आतंकवादं विरुध्य असहिष्णुता न केवलं वक्तव्यं नास्ति अपि तु कार्याचरणस्य कश्चन दृढसंकल्पो वर्तते. अद्य नवदिल्ल्यां फॉरेस्ट फर्स्ट कॉन्क्लेव इत्यत्र संबोधयन् श्री सिंहः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतम् आतंकवादिनः न केवलं स्वसीम्नि प्रहरिष्यति अपि तु आवश्यकतानुसारं तेषामाश्रयेषु प्रविश्य अपि दण्डयिष्यति. सः अभाषत यत् सिन्दूराभियानावधौ समग्रं विश्वम् अस्य साक्षी अभवत् यत् तदभियानं तांत्रिक युद्ध पद्धत्याः कञ्चन उत्कृष्टम् उदाहरणम् आसीत्.
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है. आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है. आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया. हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है.
0: मंत्री सविशेषं प्रख्यापितवान् यत् विगतेषु द्वादशसु वर्षेषु नरेन्द्र मोदी सर्वकारेण रक्षाक्षेत्रस्य पुनरुद्धारः सुदृढीकरणं च स्वस्य शीर्ष प्राथमिकतासु स्वीकृतम्. श्री सिंहः अकथयत् यत् सर्वकारेण न केवलं भारतस्य रक्षाक्षेत्रं सुदृढीकर्तुं संकल्पः धृतः अपितु रक्षा आवश्यकतानां पूर्तये देशस्य आयात निर्भरतां न्यूनीकर्तुमपि दृढः प्रयासो विहितः.
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई. सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया. इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी.
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. बहुभ्यः दिवसेभ्यः नवदिल्ल्याः जन्तर मन्तर प्रांगणे अनशने निरतः सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुकः ह्यः रात्रौ आवश्यक चिकित्सकीय सेवायै सर्वकारीय चिकित्सालयं प्रति नीतः। नवदिल्ल्याः आरक्षि उपायुक्तः सचिन शर्मा अवोचत् यत् श्रीवांगचुक इत्यस्य उत्तरोत्तरं क्षीयमाणं स्वास्थ्यं विचिन्त्य चिकित्सकानां विशेषज्ञ परामर्शेन तथा दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशानुपालनार्थं च सः चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरितः। तस्मिन्नेव समये सफदरजंग चिकित्सालयस्य मुख्या अधीक्षिका डॉ चारू बम्बा संसूचयामास यत् श्रीवांगचुकः सम्प्रति निरन्तर चिकित्सकीय निरीक्षणे अस्ति तथा तस्मै समुचितः उपचारः प्रदीयते। डॉक्टर बम्बा इदमपि विशदीकृतवती यत् सः पूर्णरूपेण सचेतनो वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्येषु अतिवृष्टि पर रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्येषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागस्यास्य आधिकारिक विवरणानुसारं अद्य बिहार मध्य प्रदेश पूर्वीय उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल माहे ओडिशा राज्येषु तथा समस्त पूर्वोत्तर प्रांतेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। अनेनैव सह श्वः यावत् तटीय आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा क्षेत्रेषु वज्रपात मेघ गर्जन पुरस्सरं तीव्र झंझावातस्य अपि महती आशंका वर्तते। तत्रैव उत्तर भारते दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब प्रांतेषु अद्य नागरिकाः तीव्र उष्ण आद्र वातावरणेन नितरां संतप्ताः भविष्यन्ति। टोक्यो नगर्यां जापान ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य उपान्त्य द्वन्द्वं विजित्य द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य सुप्रसिद्धा क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य अंतिम चरणे स्वस्थानं सुरक्षितं अकरोत्। तस्याः प्रतिद्वन्द्वी चीन देशीया चेन यू फेई प्रतियोगितायाः द्वितीय चक्रे अकस्मात् अस्वस्थता कारणात् क्रीडांगणं परित्यक्तवती येन सिंधु अयाचितं विजयम् अवाप्य अंतिम चरणं प्रति सोत्साहं प्रातिष्ठत। अस्मिन् द्वन्द्वे सिंधुः प्रथमं चक्रम् 21:19 इत्यांकान्तरालेन विजित्य द्वितीये चक्रे अपि 15:10 इति अंकैः अग्रे धावन्ती आसीत् यदा चीन देशीया क्रीडिका स्पर्धायै असमर्था संजाता। जापान ओपन उपाधिं समलंकर्तुं बद्ध परिकरा पीवी सिंधुः श्वः अंतिम चरणे जापान देशस्य अकाने यामाचुची इत्यनया सह क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम्बर मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान इससे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म,

0: मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
4: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट। हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र

और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी।

0: उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमरीका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton wearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering pursuit of truth and justice with sensitivity, courage and compassion. A performance that leaves a profound and lasting impact. Actress Yamini Gautam. Best actor in a leading role, Shahid. Chandu Champion, Hindi, for a performance that transcends the conventions of a sports biopic, bringing an unsung hero story to life with dignity, sincerity and lasting impact. Actor Kartik Aaryan.
1: Chairman of Jury Non-Feature Film Asim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best Short Film is Humsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity.

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devvrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent, Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaroh, Sankat Mochan Sangeet Samaroh, Saptak Sangeet Samaroh, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries, such as USA, Canada, Spain, France, Italy, and Germany. Devvrat Mishra has been honored with the National Youth Festival Award, Swarmani Alankaran, Kashi Ratna, Sangeet Shikhar, BHU Kostub Samman, German Best Jazz Critic Award, and the World Music Visionary Award, USA. In tonight's program, accompanying him on tabla is Prashant Mishra, an A-grade artist of Akashvani. Devvrat Mishra is beginning his sitar recital tonight with Raag Jog, Vilambit and Dhrutgat set to Teen Taal.

0: सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाय देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। अकंपनीइंग हिम ऑन तबला वॉज प्रशांत मिश्रा। अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी वाराणसी दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।